अस्सलाम वालेकुम सामने, सदाए तुर्किया से मुखातिब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 29 अगस्त रोज सप्ताह है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने पर निश्रियात को शॉर्ट फेज 16 मीटर बैंड 17,000

503 किलोहर्ट्ज़ के अलावा दूरसा 3A ईस्ट और 4A वेस्ट में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। सामने आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिला प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानियों फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा ये प्रोग्राम हस्बे मामूल एक घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपल।

मकसद ईरानी निजाम को कमजोर बनाना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जुम्मे को रिपोर्ट किया, ईरान के खिलाफ जंग में जदीद असला के वसी इस्तेमाल ने अमरीकी फौजी स्टॉक पॉइल्स को नुमाया तौर पर खाली कर दिया है, जिससे वॉशिंगटन की चीन रूस के खतरा को रोकने की सलाहियत महदूद हो गई है। अस्करी मनसूबा कारों इस खदशे का इजहार किया। मिसाइल की सखराज ने अमरीकी यूरोपीय कमांड जो पूरे प्रयास में अमरीकी फौजी ऑपरेशन की जिम्मेदार शाखा को अपने ऑपरेशन मनसूबों में तरमीम करने पर मजबूर कर दिया है। अमरीकी हुकाम को तखमीन है, अगर कलील मुद्दत में कोई फौजी कार्रवाई हुई तो वॉशिंगटन ताइवान के दफा के लिए अपने हंगामी मनसूबे मुकम्मल तौर पर नाफज नहीं कर सकेगा। हुकाम का कहना है जापानी जनूबी कोरिया और जर्मनी से फजाई दिफाई यूनिट्स को मशरक उस्ता मुंतकिल करने से अमरीकी आर्मी फौजी पोजिशन में कमजोर गोशे पैदा हो गए हैं जो बरसों में ही दोबारा बहाल हो सकेंगे। कुछ हुकाम ने दावा किया है कि यूरोप में पैक 3 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स और ATACMS जमीन से जमीन पर फायर करने मिसाइल्स के जखायर इंतहाई खतरनाक सतह तक कम हो चुके हैं। मजीद बरां थाट एंट्री मिसाइल इंटरसेप्टर्स और ड्रोन मुखालिफ निजाम भी मशरिक वस्ता की तरफ मोड़े गए हैं, जिससे बरयास में दस्तयाब सप्लाई मजीद कम हो गई है। इन इकदाम ने मगरबी मालिक की यूक्रेन को इंटरसेप्टर भेजने की सलाहियत को सख्ती से महदूद कर दिया, जबकि रूसी मिसाइल हमले जारी हैं। सदर ईरान मौजूद पाजिशकियान ने अपने मुल्क के अंदरूनी बैरूनी मामलों का सरकारी टेलीविजन पर जायजा पेश किया। उन्होंने कहा ओमान के साथ आपने हुर्मुज के बारे में की गई बातचीत में यह तस्लीम किया गया है कि आपने हुर्मुज मुहदा शुदा नक्शे की बुनियाद पर दोबारा खोली जा सकती है। ईरानी सदर ने कहा मौजूदा मुसाकराती अमल में हुर्मुज के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। इस रोड मैप के ईरान के रहनुमा आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई के सामने पेश किया गया। पासदार इंकलाब फौजी कुवतें और मुसाकरा टीम में शामिल हमारे भाइयों ने भी इसे मंजूर किया। पाजिशकियान ने कहा अगर राहदारी उसी दायरे के तहत कार के तहत खोला जाए तो अमरीका को भी अपने वादे पूरे करने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा वॉशिंगटन को बहरी महासरे पाबंदी को खत्म करना, ईरान के मुंजमद असास से जारी करना और इसराइल पर जोर डालना चाहिए कि वह लुबनान में अपने इकदाम रोक दे। पाकिस्तान ने मजीद कहा अपने हुर्मुज को खोलने का अमल इस्लामाबाद मुफाहमत नामे में बयान करता मुखालिफ फ्रीकेन के कबूल करता दायराकार के मुताबिक है और इससे नाफजुल अमल होना चाहिए। हमें हमसाय मालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। उन्होंने कहा मैं अपने महबूब शहीद साबुक रहनुमा आयतुल्ला अली खमनेई के नजरियात की बुनियाद पर सफारकारी को मजबूत करना होगा और हमसाय मालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए, अगर जिन ताल्लुकात में हम आहंगी से आगे बढ़ रहे हैं।

ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। एक वसीपाने के यूक्रेन ड्रोन हमले में रूस के जनूबी इलाके रोस्तोव में मुतद अफराद जख्मी हो गए, जबकि पास रहायशी इमारतों को खाली करा लिया गया। वरना यूरी सलोसार ने टेलीग्राम पर तस्दीक के दुश्मन कशदी हमले में 7 अफराद जख्मी हुए बताया गया कि 4 जख्मियों को सूबाईदार हुकूमत के अस्पताल में जेर इलाज ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि रात के हमले के बाद एक शख्स की हालत तश्वीशनाक है। जिला प्रोलेतार्स्की में गिरने वाले ड्रोन के टुकड़ों ने 2 बुलंद रहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद हंगामी हितमात ने रहायशियों को आर्जी पनाहगाह में मुंतकिल किया। अक्साई की जिला में हुकाम ने गोदाम से ड्रोन के टुकड़े बरामद किए और करीबी जंगल की पट्टी में आग भड़कने की इत्तला दी। बागा यफसी दिला में नजी मकान को नुकसान पहुंचा था, हम किसी जान नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यूक्रेन ने ताहाल इस हमले पर कोई बयान जारी नहीं किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने वेनेजुएला के साथ एक बड़ा तेल मुआहदा कर लिया है। ट्रंप ने जुम्मे को ट्रूथ सोशल पर अपने ट्वीट में लिखा है, अमरीका ने वेनेजुएला के साथ एक मुआहदा तय कर लिया है जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा तेल मुआहदा है। उन्होंने कहा, मेरी हदायत पर वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पैट हेक्सेथ, वेनेजुएला की इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ करीबी तअल्लुकात में और निजी कारोबार के इश्तराक के जरिए वेनेजुएला के साबित शुदा तेल के ज़खायर में से 65 अरब से ज्यादा बैरल पर अमरीकी अक्सरियती कंट्रोल को यकीनी बनाते हुए अमरीकी टैक्स दहिंदा पर कोई बोझ डाले बगैर यह मुआहदा तय पाया है। ट्रंप ने कहा, यह मुआहदा अमरीकी तेल के ज़खायर को 2 गुना से भी ज्यादा कर देगा। काराकास ने बाद अजाएं सौदे की तस्दीक की। अबूरी रहनुमा डेल्सी रोड्रिगेस ने सोशल मीडिया पर इस तारीखी मुआहदे को सराहते हुए लिखा, इसका हमारे मुल्क की असनों निशात पर अहम असर होगा और मुमकिन सरमायाकारी को 100 अरब डॉलर से जायद रियासत के टैक्स की सूरत में 209 अरब डॉलर से जायद आमदनी करार दिया। जंग में जब अमरीका ने साबिक सदर निकोला मादुरो को बरतरफ इख्तदार से हटाया तो वाशिंगटन अमरीकी रिफाइनरीज के लिए वेनेजुएला के खाम तेल का मुस्तहकम बहाव यकीनी बनाने के साथ साथ ओपेक के इस मुल्क की ज़वाल पसीर तवानाई सनत में अमरीकी सरमायाकारी को फरोग देने की कोशिश कर रहा है, जो इस वक्त योमिया तकरीबन 1.25 मिलियन बैरल खाम तेल पैदा करती है। रोबी ने कहा, यह मुआहदा दोनों मालिक के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वेनेजुएला में तकरीबन 100 अरब डॉलर की खतीर निजी सरमायाकारी भी लाई गए। तो को अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट आइंदा हफ्ते वेनेजुएला का दौरा करेंगे। अमरीकी फेडरल रिजर्व के सरबराह ने खबरदार किया है, महंगाई बदस्तूर बुलंद सतह पर है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन क्यून वार्श ने कहा कि लचकदार इक्तसादी सरगर्मियों मसनू जहानत में बढ़ती समायकारी के बावजूद अमरीका में अफराद रिजर्व बहुत बुलंद सतह पर है। जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सम्पोजियम से खिताब करते हुए वार्श ने कहा, फेड का तरजीह अफराद रिजर्व का इशारा गुज़श्त साल 3.7% रहा, जबकि 6 माह की शरह 4.1% तक पहुंच गई। उन्होंने नोट किया, हालिया सबसा अफराद रिजर्व के दादोशुमार बुनियादी कीमतों के दबाव में नुमाया कमी को जाहिर करने के लिए नाकाफी हैं। जनूबी कोरिया के एक टैंकर ने पानामा कैनाल से गुजरने के लिए ट्रांजिट फीस की मद में 5.3 मिलियन डॉलर की अदायगी की। जनूबी कोरिया के एक मायातेर के टैंकर ने पानामा कैनाल के जरिए तरजीह गुजरगाह हासिल करने के लिए 5.3 मिलियन डॉलर की रकम अदा की, जब हुकाम को खुशसाली की वजह से ट्रैफिक को महदूद करने पर मजबूर किया गया। एस के गैस ने रकम 1 सितंबर को अदा की। मसलूबा पन एल नीनो से मुतलक पाबंदियों के लागू होने से 2 दिन पहले जी स्पिरिट जहाज के लिए ट्रांसिट फीस के तौर पर पानी गिरती सतह ने इस अहम शिपिंग रूट में रुकावटें पैदा की हैं। WHO का समय हजारों अफराद तिब्बी इनखला के मुंतजर हैं। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल तेड्रोस अदानोम गेब्रेसस के मुताबिक समय हजारों मरीजों को फौरी तौर पर तिब्बी इनखला की जरूरत है। गुज़श्त हफ्ते WHO ने रफाओ और क्रीम शालूम क्रॉसिंग के जरिए 106 मरीजों को, जिनमें 19 बच्चे भी शामिल थे, के नखला की हमायत की। गजा व इसराइल की नसलकुशी की जंग शुरू होने के बाद से सिर्फ 13,200 मरीजों को निकाला जा सका है, जिनमें 6,276 बच्चे भी शामिल हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल मरीजों को पर्वत इलाज की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतद क्रॉसिंग प्वाइंट से मुसलसल गुजरने पर भी जोर दिया। इसके साथ इस दाए तुर्किया से खबरें खत्म हुई। पाई सामिन सदाए तुर्किया से हादिसे की आवाज में एक तुर्की नगमा सुनते हैं। गाने के बोल हैं वो आरालार।